104.8 सिल्वर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरूको लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान में 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर प्यालेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड।

प्रत्येक सोमबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम ज्ञानोदय। यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर बाग बजार र चारु हिल। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजली प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा सी आसबा सुविधा कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा निशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

हर्षाई आरती की थाली देखो सजवाई माताएं देखो मन में हर्षाई आरती की थाली देखो सजवाई।

बाल कृष्ण के मुख से विवाह जिद पहले तो मैया को बड़ा ही आनंद देता है। वो बहुत देर तक अपने लला को देखती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें लगता है कि मेरा लला तो गंभीर हो गया है, तो मैया उसे समझाते हुए कहती हैं,

मित्रों, माँ की बात सुनकर भगवान बालकृष्ण जी इस सोच में पड़ जाते हैं कि वो तो सोच रहे थे कि हमेशा की तरह इस बार भी मैया को तुरंत मना लेंगे, मगर मैया जी तो मानने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। वो कहती हैं कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। बस यही सोचते हुए भगवान कृष्ण पैतरा बदलकर मैया को समझाने लगते हैं।

कंधे से लाल गोपाल की बात सुनकर मैया मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती और सोचती है कि आज मेरे लला को क्या हो गया, ऐसी जिद क्यों पकड़ कर बैठ गया है। और ये भी सोचती है कि लला कह भी नहीं रहा कि बड़ी बड़ी गौएं चरा कर लाता है, अब इसे क्या जवाब दूं। इधर माँ के मन की बात जानकर अंतर्यामी भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि आज तो मैया दुविधा में फंस गई। लेकिन तब मैया लाला मदन गोपाल की तरफ देखती हैं।

साथियों, मैया की इतनी सी बात जब नंदलाला ने सुनी तो वो समझ गए कि मैया के आगे अब दाल गलने वाली नहीं है। सोचने लगे कि अब करूं तो क्या करूं, मामला अपनी जगह पर जम जाए। उधर अपने सुकुमार की दशा देखकर माता यशोदा मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी, मगर ये भी सोच रही थी ये नटखट नंद गोपाल मोर मुकुटधारी मेरा लाडला इतना शीघ्र मानने वाला तो नहीं है। कि तभी भगवान कृष्ण पैतरा बदल कर बोलते हैं।

प्रिय लाला की ऐसी मजेदार बातें सुनकर मैया यशोदा और अधिक प्रसन्न हो जाती, किंतु अपने छोटे से कान्हा की हाजिर जवाबी से उन्हें लग रहा था कि उनका लाला बड़े होकर उनका नाम रोशन करेगा ही। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लाला को कैसे समझाएं कि वो अभी विवाह के योग्य नहीं है। उधर भगवान को भी लग रहा था कि अब माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, अब इसे और परेशान नहीं करना है। वो माँ से क्षमा मांगने ही वाले थे कि माता जी कहते हैं।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई ट्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: ஆறேல் சுச்சபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9820076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
6: FM AJ 104.8

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सँगैभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: भोलि त्यहाँ त फिल्म हेर्दाखेरि भोलि मारौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्स।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नु हुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9820076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: कदम मेरे कदम,
1: किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा,
2: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा
0: के धूप में खिला।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.5।

0: ओल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

सुदामा और कृष्ण की मित्रता के चर्चे तो सबने सुने ही हैं, लेकिन जब कृष्ण मथुरा पहुंच गए और मथुरा नरेश बन गए, सुदामा तो वहीं रह गए। वही गरीबी, वही दरिद्रता। पत्नी ने एक दिन समझाया कि जाओ, तुम्हारे बचपन का दोस्त तो अब राजा बन गया है, जाके कुछ मदद ले लो, हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। बहुत संकोच किया सुदामा ने, लेकिन पत्नी के बहुत कहने पे चल दिया मथुरा की ओर।

सारथी अर्थात सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीना धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते अर्थात निकलते क्यों नहीं। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूर वीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं।

जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसी ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु प्राण नहीं निकलते क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा।

जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़े ही मेरा कीचड़ की तरह फट नहीं गया, इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है।

सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम के ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो।

अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहां है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हे स्नेही मेरे प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जी कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र सुमंत्र कहो कहो राम कहां है।

राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहां हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगा, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिए। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे सखा, श्री राम जानकी लक्ष्मण जहां है मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं।

राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे।

केवट ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर

से श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति
3: हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा सब माताओं के पैरों में पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कोसलपति पिताजी कुशल रहें।

बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें।

हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया।

उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट में पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा होगा।

कंठ में आ गए। मानो मणि के बिना सांप व्याकुल अर्थात मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर से आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौसल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो।

0: धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले,
1: सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहां है, लक्ष्मण कहां है, स्नेही राम कहां है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहां है।
0: राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी अर्थात श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौसल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए।